0: गुरु जी की फतेह।
1: सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सोट महला पंजवा, गुर का शब्द रखवारे, चौकी चो गिरद हमारे। राम नाम मन लागा, जम लजाए कर भागा। प्रभ जी तू मेरो सुखदाता, बंधन काट करे मन निर्मल, पूर्ण पुरख विधाता रहाओ। नानक प्रभा बनासे, ताकि सेवन बिरते जासे। आनंद करह तेरे दासा, जा पूर्ण हुई आसा। बिलावल महला पंजेवा, ताती वाओ नन लगई, पार ब्रह्म शरणाई। जो गिरद हमारे, राम कार दुख लगे न पाई। सतगुर पूरा भेटिया, जन बणत बनाई। राम नाम आओ खुद दिया, एका निवलाई रहाओ। राख लिए ते रखनहार, सब व्याध मिटाई। कहो नानक कृपा भई, प्रभै सहाई। सलोक जय साधु गोबिंद भजन कीर्तन नानक नीत। ना हो ना तू रह छुट है, निकट न जाइयो दूत। सलोक महला पंजवा, मन में चित बो चित बनी।

माता तरतम हक दिवस रात दोया खेलै सगल जगत चंगियां बुरियां वाचा तरम हदू करमिया।

जम कारणा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा ए पावन श्री मुख वाक तना श्री राग अंदर श्रोमणी भगत नामदेव जी दी पावन रसना तो उचारण होया है अते सतगुरु साहिब गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन अंग 693 तो आरंभ होके 694 उपर संपूर्ण हुंदा है। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच न होवई जे सोची लख वार चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार भुखियां भुख न उतरी जे बन्ना पुरियां पार सहस स्याण पां लख होहे ता इक न चलै नाल किव सच्यारा होई है किव कूड़ा तुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल

दुख सुख पाई है, एक ना हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा पवाई है, हुक्म है अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए, नानक हुक्म है जे बुझै ता हो मैं कह ना कोए, गावै को तान होवै किसे तान, गावै को दात जाने निशान, गावै को गुण वड्याईयां चार, गावै को विद्या विखम विचार, गावै को साज करे तन खेह, गावै को जी लै फिर देह, गावै को जापै दिसै दूर, गावै को वेखै हादरा हदूर, कथना कथी ना आवै तोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट, देंदा दे लेंदे थक पाहे, जुगां जुगंतर खाही खाहे, हुक्मी हुक्म चलाए राहो, नानक विगसै वे प्रवाहो, साचा साहिब साच नाए, पाख्या पाओ अपार, आखै मंगै देह देह दात करे दातार, फेर के अगै रखी है जित दिसै दरबार, मुहों के बोलन बोली है जित सुन धरे प्यार, अमृत वेला सच नाउ वड्याई विचार, करमी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार, नानक एवै जानिए सब आपे सचियार, थाप्या ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए, जिन सेव्या तिन पाया मान।

राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें मत एक न मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहें हम एक ना जान्यो श्री स्पान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तो हे बखान्यो दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गहो तुहारो द्वार बाहे।

गोबिंद दास तुहार। रामकली महला तीजा आनंद, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया सहज सेती, मन वजियां वाधाइया, राग रतन परवार परियां, शब्द गावन आईया, शब्दो तगावहो हरी केरा, मन जिन्नी वसाया, कह नानक आनंद होआ, सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरे आ, तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना, अंगीकार ओ करे तेरा, कार्य सब सवारना, सबना गल्ला समरथ स्वामी, सो क्यों मनो विसारे, कह नानक मन मेरे, सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाही कर तेरा, करता तेरा सब किछ है, जिस देह सो पावे, सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे, नाम जिनकै मन वसया, वाजे शब्द कनेरे, कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरा। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखां सब गवाईया, कर शांत सुख मन आए वसया, जिन इच्छा सब पुजाईया, सदा कुर्बान कीता गुरु विटो, जिस दियां ए वडियाईया, कह नानक सुनो संतो, शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द, तित कर सभागै, कर सभागै शब्द वाजे, कला जित घर धारिया, पंच दूत तुद वस कीते, काल कंटक मारिया, तुर करम पाया तुद जिन कौ, से नाम हर कै लागे, कह नानक तै सुखोआ, तित घर अनहद वाजे, साची लवै बिन देह निमाणी, देह निमाणी लवै बाजो, क्या करे वेचारिया, तुद बाज समरथ कोय नाही, किरपा कर बनवारिया, ए सुनो होर थाओ नाही, शब्द लाग सवारिया, कह नानक लवै बाजो, क्या करे वेचारिया, आनंद आनंद सब को कह, आनंद गुरु ते जानिया, जानिया आनंद सदा गुर ते, किरपा करे प्यारिया, कर किरपा किल विख कटे ज्ञान, अंजन सारिया, अंदरों जिनका मोह टुटा, तिनका शब्द सच्चा सवारिया, कह नानक इहो आनंद है, आनंद गुर ते जानिया, बाबा जिस तू दे सोई जन पावै, पावै ता सो जन देह जिसनो, होर क्या करै वेचारिया, एक भरम भूले फिरे दह दिस, एक नाम लाग सवारिया, गुर

अकथ की करह कहानी अकथ केरी कित द्वारा पाईए तन मन धन सब सौंप गुरु को हुक्म मन्ने पाईए हुक्म मन्हो गुरु केरा गावो सच्ची बाणी कह नानक सुनहो संतो कथिहो अकथ कहानी ए मन चंचला चतुराई किने ना पाया चतुराई ना पाया किने तू सुन बन मेरिया ए माया मोहनी जिन एत भरम भुलाया माया ता मोहनी तिने कीती जिन ठगवली पाईया कुर्बान कीता तिसै विटों जिन मोह मीठा लाया।

तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा। बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री

तेग तेग फते बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी

आज आपके हजूर अरदास है जी। आप जी ने अपार बख्शिश कीती, चार पहर रैन आप जी दे भाणे अंदर सुखां दी बतीत होई। कोटान कोट शुक्र है, चार पहर दिन आया है अपने भाणे अंदर सुखां दा बतीत करवाउणा। पातशाह जी अमृत वेले आप जी ने अपार बख्शिश कीती, संगत नूं खुले दीदार बख्श के निहाल कीता है। आप जी के हजूर अमृत वेले दिया पंज बाणियां दा जाप होया है। बाणी पढ़दिया आप जी दी हजूरी विच विचरदिया होइयां बेअंत प्रकार दिया भुलां लई खिमा जाचना है। अगे तो सुमत बख्शिश करनी, पढ़ी बाणी दा भाव समूह संगत दे हिरदिया ते वसाउणा। पातशाह जीओ इसे तरह अपनी सिफत सलाह दा बाल बुद्धि उद्दम चाओ बख्शिश करना। गरीब नवाज आप जी के हजूर पंचामृत कड़ा प्रसाद हाजिर है। दर प्रवान होवे, प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शो। गरीब नवाज दर आई समूह संगत दिया तिल फुल पेटावां हाजरियां दर प्रवान करनियां। समूह संगत दिया शुभ मनोकामनावां गुरमत अनुसार पूरियां करनियां। समूह परिवारां विच आपसी प्यार इतफाक तंदुरुस्ती।

मेहमाना जान है वेद, ब्रह्मे नहीं जान है भेद, अवतार न जान है अंत, परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत। तू समरथ अकथ अगोचर, जियो पिंड तेरी रास, रहम तेरी सुख पाया सदा, नानक की अरदास। एक नानक की अरदास जे तुद भावसी, मैं दीजै नाम निवास, हर गुण गावसी। सो कहो टल गुर सेवी, एहनिस सहज सुपाए, दर्शन परसे गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसम दी, नूर अरशों कुरसों झटी है, तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी है, सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाहां दे शाह, जिस पास बैठिया।

कृष्णा ते जानऊ हर हर नाचंती नाचना पहल पुरसा बिरा अथोन पुरसा दमरा असगा अस उसगा

हे मैये एक आन जियो पिंदी उपकले संसारा भ्रम भ्रम आए तुमचे द्वारा तू कौन रे मैं जी।

राख राख मेरे बिठला जन शरण तुम्हारी। बिखै बिखै की बासना तजी ना जाई, अनक जतन कर राखिए फिर लपटाई। जरा जीवन जो बन गया किछ किया न निका,

तुम समसर नाही दयाल, मोहे समसर पापी। कहो कबीर मेरे माधवा, तू सर्व व्यापी, तू सर्व व्यापी, तुम समसर नाही दयाल, मोहे समसर पापी, मोहे समसर पापी। सो कहो टल गुर सेविया, अहनस सहज सुपाए, दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसम दे, नूर अरसों कुरसों चटिया, तुद डठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया।

आप जी के हजूर पंचामृत कड़ा प्रसाद हाजिर है, दर प्रवान होवे, प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरताउण दी।

प्रभु नानक दे कर हथ तू प्रभ दाता दान मत पूरा हम थारे पेखारी जियो मैं क्या मांगो किछ थिर ना रहाई हर दीजै नाम प्यारी जियो विण तुद होर जे मंगना

कृष्णां ते जानौ हर हर नाचंती नाचना पहल पुरसा बिरा अथोन पुरसाद मरा असगा आस उसगा

जन्म मनुखा सफला बना दियो, आसा ते उम्मीदा सब हुण पूरियां। जन्म मनुखा सफला बना दियो, रहमतां दे दाते मेरे सच्चे पातशाह, साडे उत्ते नादर सवली पा दियो। रहमत

सोवैया। पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं। अन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सबै बहु भेद कहे हम एक ना जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहियो सब तोहे बखान्यो दोहरा।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह है। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै। गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आईऐ जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नाउ निद आवै ताहे। सब थाई होए सहाय दसवे पातशाह धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। सब थाई होए सहाय दसाही पातशाहियां दे प्रतख स्वरूप जुगो जुग अटल। धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीयां दे पाठ दर्शन दीदार जी का ध्यान तर के बोलो जी। पंज प्यारे चार साहिबजादे चाली मुखते समूह संगतां हठियां जपियां तपियां। जिन्ना आप जी दा नाम जपिया वंड के छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अण डिठ कीता। तिना प्यारियां सचियारियां दी पावन पवित्र कमाई दा ध्यान तर के बोलो जी। जिन्ना सिंघा सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां। चरखड़ियां ते चढ़े तन आरियां नाल चिराए गए बच्चियां दे टोटे टोटे करके गलां विच हार पवाए। सवा सवा मन दे गिल्ले पीसने पीसे खन्नी खन्नी रोटी ते गुजारा कीता। जंडा नाल बन के साड़े गए देगां विच उबाले गए पुठियां खल्लां लोहाइयां। गुरद्वारियां दी सेवा संभाल दे लई कुर्बानियां कीतियां। धर्म नहीं हारिया सिखी केसां स्वासां संग निभाही। तिना समूह शहीदां दी पावन कमाई दा त्यांतर के बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दी पावन कमाई दा त्यांतर के बोलो जी। प्रथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब। तहां तहां रछिया रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज। पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी।

नाचन्ति गोपी जना नैया ते बैरे कन्ना तर्क नाचा प्रमिया चा केसवा बचौनी अये मैये एक आन जियो पिंदे उबकले संसारा भ्रम भ्रम आए तुम चे द्वारा